अराइति तेन्डेनुका भिगाकारी इच्छक मथिलुगी छन् अले तारे ची गोथाको सबै तारे ची गोथाको सबै गोङे चिन्जी आसपुइलामा फेम गोउनी आगो लेन्जिन ओये हो क्वेत ओये नगी थुप्चे ओये इन्थिलिया ओये बमुरु आगो माच कङवानित खोले ओये मति ये से मति वन्डा गोति तिन्यो वे सो इतारेत अले तारे ची गोथाको सबै मात्काई गान ये गागो बेत सबेत इ लले बनि सुत आगो मेल ची सुत को सबै छेदा नथरगा वे छेतेगो इच्छक तमना गाङे छक बताइन साइट तमना मु छक बताइन साइट तमना गाङे छेत कोनो अदर बताइ फ्रॉम मे टु गेट अप क्वालेन्सिन फाटा चिन ची टु लेनु टु लेले मिथेन अलेन करिबु साना कि तोरोरी गी लसु अगे वे कि गोंगो गो मुक्त इन देत गरिबे चेंगे मग मुगुल को थोंगुनि गो गेंगे छके मिके छमेगे के मिथे गे बाय बाय किले जिनी गो थ्वे छरे एत न बबे टु था ब्रान गो रुर बाय सोने छबे उने क्यो आगो सुलडे वे चेन मगु थके मकिनी गे गो दरे छमि सिविताल छ संगे वाने बोरवे छबे न थे न रात न वे छबे न गरि शेक अनबे छबे न गे लिए कोबा गो कोइ चलबे इंडी गो छमेगे मेस्तो न के बसे ताने छ गरिच को उरसी को केसा चोट कर देने जान भाई मेथने मिथने मथने का सा को मंडाइरा मुत खेलो बिरुर छो बगो गछि नायत को गछि नु न छेत को गछि कि न थेत असि मिथो छ मिथने मथने का सा को गलाल ऑन बिहाफ न भाई मेन आगो मुआ तुगु छ वेन दिगो थारेति ए मेथ न अदर बकेना आगे सा जो ग्राफिक छ गमे थेछि गोंडो छ मेथे योलंदा नेओ न भाई मेथ प्रेस्टन के मके गाडो न थेत कि आगे तुल नमे आगे सा गोंडो गालिय थेने मेथेन कोंडोइक गोंडो गालिय थेन फैमिली से चोक कि बेरुर लोग कि बेरुर मिनुतिक चबम बार कि बेरुर गिया कि अगी बेरुर रे छै छै चुगुल आगे मा वरा गेले गोंडो वेगा छै गागे लेल छै गोगी गेर छै गागे मा अनन छै गागे छै मुनोल जिन थाइंग केले चुगुल amen amen amen amen karibu sana chitabu ya ta kwalenchi ne nitu lele minten kaina nyungo bruce kai 20 matatu ne wat thorigi tipta maga hoyer wai betu she kumbe christmas na karipia Hello to give me gasarta na gigaran kabisa go yonga greek ta christmas ke bago gen januar go match kong wanit januar because ka ginam ge wek school lakini yari ta ta christmas ina ile hie iwe kini choba ngoi because ko iwa ngogenyit ko mi imi go mye imi teni cha mege imi teni ba imi teni sabe ago gai to sige ta sta su tu na miu he aye gorom gorom su tu na miu to mo gase gorom su tu na miu ya kabisa awe xe ak su tu ngo mo la chena matian

0: सिरदो के बजरी जी कथा के बुआ न गुमने लगन का जो कथा रहा आपको कहते हैं मां करा लगा दरदा ना रहा आपको कहते हैं अब उस हम तीन का बेसा नन्ने का से मानती है नितो ने आगे बुआ दि माने ले ता बुसे के बुन लागो जे दंगो ने को मुने नुरे आगे का से नती ने न गलो यार देखो कौन का पैसा वाली ले सुगरी दोस्त लागो जो है वो मुने जी जी है कोई भी चीज आगे मुआ ने कहा गया मुआ वो तगड़ ने कहा का सुवां का मुआ बिचु को नियमन का पैसा को ले क्या मुझे कह रहा तीजों का पैसा मुने क्या को वेज पी के जाएं कागित तेर का पैसा समावेज पी के जाएंगे एनवे रूम समान बार रातर कौन कहे सीरे अब जो किसी के रातर बार अगर पंगे से कराने निक्सो ना तेरे काम कॉल्ड किया दिखी पंगे से जाना निक्सो रहा पंगे से जाना राइट अब यहाँ की बिंदी कहकर घूमिए अम्मा जब बिग 15 हो अम्मा जब बिग 15 है जब इंडिया 10,000 ना कहते गोल बिग 15 जब इंडिया 10,000 ना कहते हुए इंडी जीता गए अंके अब बिग बिग इतना ना होगा 150,000 उन्हें ना बिंदी बिग चांग 10,000 नहीं है है अम्मा जब बिग 15 जब इंडिया 10,000 अम्मा इतना रखा रखा टिकट नहीं है स्टार्टू 74 आश आगे तिल टिकट नॉट रिमिटन नंबर वन है स्टार्टू 74 आश तिल टिकट नंबर वन पैसे मराने तो नीचे की कभी सारा कारा का इतने की जो टिकट टाइम के लिए तो मिनोर चिकित्सा की बेताब रहा है इतने की जो टिकट इतने 20 शिलिंग्स अब इतना 10 शिलिंग्स इन और चीनी का 10,000 कन्या शिलिंग्स किमो को चीबी के चांग बिग 15 स्टार 274 एश तिल टिकट नंबर वन स्टार 274 एश टिकट नंबर इन्होंने को बी के चांग अलाव है इमुचो क्वालिटी का चीता गेंगा 15 जो तो गुला मुने इतने जो चीनी का 10,000 नताई इगेट चीन बॉइंग इगेट चीन बसो मग अब नंबर 15 Chile star 274 ash agi tile ticket number 1 ngoro jita na tai na to mbonyo star 274 ash til ticket number 1 idile go ticket number 1 igor chini get 10000 kenya shillings star 274 ash ticket kuno the limit number 1 kagzir gele rice nanzi gele rice ogi agun ko bwan pesa direct star 274 ash agi tile ticket ehe agere bo isogo mnye paiso gobnye agere chita na kwak 769 shillings bonus chone to manyuru 10000 tago still go be 15 jege mache Mami chinga go nyoshiga go tagenge kimai big 15 chill star 274 ash agitil ticket not admitting number ticket ko not admitting number 1 magi aya nini jitana tai pongesa sana eh not regile samuel pongesa sana samuel pongesa sana samuel kago nyoshiga samuel te ticket na tai so samuel ingele mungu akse get tingune 97215 eh 97215 ingele mungu akse get tinye echeng 10000 alage chill bag star 274 ash agitil ticket number 1 Ketin ba ketino kanyil 15 o samuel agi chantu gol ichile star 274 ash agi tile number 1 aya very serious biga gabeza ni bwana kimoje big 13 ngone mite jitana tanga gonyo chiga bara inoton pongesi not good elisha pongesi sana elisha kanyo chiga jibuget so taki machi biga ta kimoje big 13 tayari getin dai biga yenyo chiga bonus agi big chibenda bonus ketin ichile star 274 ash agi tile tige number 1 Oti niti lo kanyil taman Ibe kanyil taman Yani itila agenge Inyoti nige 10,000 Itila nabo heng 20,000 Itila nabo sumog Yani nige target ti number 1 Ketio agi omera bise jono Star 274 ash Agi itile ticket Not remitting number 1 Star 274 ash Ticket kuno mitin number 1 Inyoti nige chukuge tiling ata Inyoti nige 10,000 kenya shillings Agir tako big 13 imagino Imagine tako big 13 Chilo ba kito star 274 ash Anyway Ta itindega satano tane amati yedungune Eago limba sa moja ike tini chile star 274 ash Agi tile ticket number 1 Kimaje big 13 Iguna genge NB kebe ndi 10,000 kenya shillings Ulongi nyo chini gelo gabi me 10 goindo Agi seki el serem Kurinon vanso langata
1: The one mistake we must never do Is to elect a fool To be a president